सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: अरे सारे शराबी, क्या हो राजा?
1: गली में आ जा।
2: होली होली,
3: भांग की गोली और नखरे वाली
0: दूंगी मैं गाली।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: issue, Anita Chopra is here to help. Please visit anitachopra.com to find out more. Get in touch today.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards. Big smiles. Atal and Abta protected. T's and C's apply. See website for details.
3: Ye hai Sunrise. Retro.
4: Back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.

0: किसी के
1: क्या करना है देते?
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: This is Sunrise Retro.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travelers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravelers.notjusttravel.com. Global Travelers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey. Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 एएम इन लंदन, नेशन वाइड ऑन डीएबी, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर. सनराइज रेट्रो, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स.